एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न हुई, तू करता करना मैं नाही जा हो करी न हुई। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहे आओ। तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहे आ। सो दर राग आसा महला पहला।

हरे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देव त्यादर नाले। कावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर,

गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले

गावन तुतनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते तुद नो गावन से मैं चेतना आवन

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखां कियां वड्याइयां, तुद विन सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाकर हाईया, आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा,

जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जानु सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्दम, जा आहर हर जीव परया। शैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न

तिस पाछे बचरे चरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जा।

सो पुरख एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुध जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्याहो संतो जी सब दुख विसारण हारा।

तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो पावे सोई थीसी।

आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिस नौ तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेवया

सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखह जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मुह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेत समूढ़ मना, हर

काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, भेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जाबुद कर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको करपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जा।

सहज ती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केहे विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाओ। आब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छाह छव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सुवैया पाए।

न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी करो, श्री असपान कृपा तुमरी करो, मैं न कहूँ सब तू हिब

वाजे शब्द खनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां एह वडियाइया कह नानक सुनहु संतो शब्द धरहु प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख हुआ तित घर अनहद वाजे अनद सुन हो विड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संत

तरस पे हुई, तरस पया मेहरा मत हुई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वै हरिया पौड़ी, तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे, उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे, सुन कै जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे, पाउ जल विखम सगाहू गुरु सब दी पार पाहे, जिन कौ लगी पे।

आहे बिरथा कोई न जाए जे आवै तुदे आहे। श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर सेती रत्या दरगह पाई ऐठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे जग मह उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

शर्म ने सुनी कहानियां जे गुर थी कृपा सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह देशा जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सा जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सा वाहे गुरु साहिब जी कर्म खंड की बाणी जोर तिथ होर न कोई होर तिथ जोद महा बल सूर तिन महरां

तिथि भगत वसह केलो करे आनंद सच मन सोय सच खंड वसै निरंकार कर कर विख नदर

0: होमत प्राण
1: कनक अशव है गर्भुमदान
0: न्यूली कर्म करे बहु आसन
1: जैन मार्ग संयम अत साधन
0: निमक निमक कर शरीर कटावे
1: तौ पी होमे मैल न जावे
0: हर के नाम संसर कछ नाहे
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
0: मन कामना तीरथ देह छुटे
1: गर्भ गुमान न मन ते हुटे
0: सोच करे दिन सवार रात
1: मन की मैल न तन ते जात
0: इस देही को बहु साधना करे
1: मन ते कबहू न बिखिया टरे
0: जल तो बह बहु देह अनीत
1: सुध कहा होए काची पीत
0: मानवर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक नाम उदरे पतत बहुमूच
0: बहुत स्यान जम का पौ व्याप
1: अनक जतन कर त्रिशन न त्रप
0: एक अनेक अगन नहीं बुझे
1: ऊट उपाव दरगह नहीं सिजे
0: छूट सुनाही उपयाल
1: मुहे व्याप माया जाल
0: अवर करतूत सगली जम दान
1: गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान
0: का नाम जबत दुख जाए
1: नानक बोले सहज सुभा।

0: संग ए होम मैं शूर है।
1: जे को जन मरण ते डरै
0: सात जना की सरनी पर
1: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा
0: नानक ताके बल बल जासा
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान
0: साधु संग जाका मिटाय अभिमान
1: आपस को जो जाने नीचा
0: सो गनिय सब ते ऊंचा
1: जाका मन होए सगल की रीना
0: हर हर नाम तिन घट घट चीना
1: मन अपने ते बुरा मिटाना
0: देखै सगल श्रेष्ठ साजना
1: सुख दुख जन सम दृष्टेता
0: नानक पाप पुन नहीं लेपा
1: मेरे धन को

0: संग दुर्मत मल हिरिया,
1: सगल उद्दम है उद्दम भला,
0: हर का नाम जप हो जी सदा,
1: सगल वाणी मह अमृत वाणी,
0: हर को जास सुन रसन बग

0: बृहस्पति रमैया के गुण चेत परानी
1: कवन मूल थे कवन दृष्टानी
0: जिन तू साज सवार सिगारिया पार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध
1: योगन भोजन
0: बिरद भया ऊपर साख सैन
1: मुका प्याऊ बैठ को देन
0: इहो निर्गुण गुण कछु न बूझे जे प्रसाद धर ऊपर सुख बसै
1: सुत प्रहाद मीठ बनता संघस
0: जे प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाव कमला
0: जे प्रसाद भोगै सब रसा
1: सगल समग्री संग साध वसा
0: दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना
1: जय त्याग अवर संग रचना
0: ऐसे दुख मूड अंध ब्यापे
1: नानक कर लियो प्रभा
0: आद अंत जो रखन हार
1: इससे प्रीत न करे गवार
0: जाकी सेवा नव निध पावे
1: आसे मूड़ा मन नहीं लावे
0: जो ठाकुर साध सदा हजूरे
1: जानत दूरे
0: जाकी टहल पावे दरगह मान
1: से विसारे मुग्ध अजान
0: सदा सदा ए पूलन हार
1: नानक रखन वार अपार
0: रतन त्याग कौडी संग रच
1: साच छोड़ झूठ संग मचे
0: जो छड़ना सो अस्थिर कर मन
1: जो होवन सो दूर परान
0: छोड़ जाए तिसका श्रम कर
1: संग जाए तिस पर हर
0: चंदन लेप उतारे धोए
1: गर्द प्रीत बसम संग होए
0: अंध कूप में पत बिकराल
1: नानक काट लियो प्रभ दयाल
0: करतूत पशु की मानस जात
1: लोग बजारा कर दिन रात
0: बाहर पेक अंतर मल माया
1: सक्ष नाहि कछ करै छिपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर व्यापै लोभ सुवान
0: अंतर अगन बाहर तन स्वा
1: गल पाथर कैसे तरह अथाह
0: जाके अंतर बसे प्रभ आप
1: नानक ते जन सहज समात
0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे
1: गहले ओढ़ निभावे
0: कहा बुझार्त बुझे डोरा
1: निस कही है तो समझे पूरा
0: कहा बिसन पद गावे गूंग
1: यतन करे तो भी सरपंग
0: कह पिंगल पर्वत पर पवन
1: नहीं होत उहा उस गवन
0: करतार करुणा मैं दीन बेनती करे
1: नानक तुमरी कृपा करे
0: संग सहाई सो आवे न चीत
1: जो बराई तासे प्रीत
0: अलुआ के ग्रह पीतर बस
1: आनंद केल माया रंग रस
0: दृढ़ कर मन है मन है प्रतीत
1: काल आवे मूढ़े चीत
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ बेकार महा लोभ त्रोह
0: याहू जुगत बिहाने कई जन्म
1: नानक राख लेहो अपन कर कर्म
0: तू ठाकुर तुम पै अरदास
1: जियो पिंड सब तेरी राज
0: तुम मात पिता हम बारिक तेरे

0: लपट रहे तहे अंधार
1: से जो लावे ने
0: तो हाथ न आवे
1: के नाम की प्रीत सुखदाई
0: कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सोया
0: मिथ्या हो मैं ममता माया
1: मिथ्या राज बंधन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रथ अस्थि अस्वस्त्रा
0: मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता
1: मिथ्या त्रो मोह मान
0: मिथ्या आपस ऊपर करत कुमान
1: भगत सार की शरण
0: नानक जप जप जीव हर के चरण
1: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को गिरे
1: मिथ्या नेत्र पेगत पर त्रिया रूपाद
0: मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद
1: मिथ्या चरण पर पुकार को तावे
0: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
1: मिथ्या तन नहीं पर पुकारा
0: मिथ्या पास लेत बिकारा
1: बिन बूझे मिथ्या सब पाए
0: सफल देह नानक हर हर नाम लय
1: मिट्टी सागत की आर जा
0: साच बिना कहे मुहत सूचा
1: मिटता नाम बिना तन अंध
0: मुख आवत ताके दुर्गंध
1: बिन सिमरन नैन बिरता व्याए
0: वेग बिना ज्यों खेती जाए
1: गोविंद भजन बिरते सब काम
0: ज्यों कृपन किनर आरत दाम
1: तन तन ते जंडे कड़व से और नाहू
0: नानक

0: से आप न करे
1: आवत जावत जन्म मरे
0: जिसके अंतर बसन अंकार
1: जिसकी सीख तर संसार
0: तुम पाने दिन भव जाता
1: नानक उन जन चरण पर आता
0: बेनती पार मम सब जाने
2: अपना किया
1: मन
0: पे आप करत नेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
0: आप ज्ञानंत सकल ते रहत
1: सब कछ जाने आत्म की रहत
0: भावे तसलय लड़लाए
1: आंतन कर रहा समाए
2: सो सेवक जिस कृपा करी
1: निमुख निमुख जा

0: जेहे प्रसाद चत्ती अमृत खाहे।
1: तिस ठाकुर को रख मन माहे,
0: जेहे प्रसाद सुगंध तन लावे।
1: किसको सिमरत परम गत पावे,
0: जेहे प्रसाद वसह सुख मंदर।
1: तिसह त्याहि सदा मन अंदर,
0: जेहे प्रसाद गृह संग सुख बसना।
1: आठ पहर सिमरहु तिस रसना,
0: जेहे प्रसाद रंग रस भोग।
1: नानक सदा त्याहि त्यावन जोग,
0: जेहे प्रसाद पाठ बटंबर हडावे।
1: तिसे त्याग कत अवर लुभावे,
0: जेहे प्रसाद सुख सेज सोई जय।
1: मन आठ पहर ताका जस गावी जय,
0: जेहे प्रसाद तुझ सब को मन।
1: मुख ताकू जस रसन बखन,
0: जेहे प्रसाद तेरो रहता धर्म।
1: मन सदा त्याहि केवल पार ब्रह्म,
0: प्रभु जी जब दरगह मान पावे।
1: नानक पात से ती घर जावे,
0: जे प्रसाद आरोग कंचन देही।
1: जिब लावो तिस राम स्नेही,
0: जे प्रसाद तेरा ओला रहत।
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत,
0: जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके।
1: मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके,
0: जे प्रसाद तुझको न पूछे।
1: मन सास सास सिमरहु प्रभ ऊचे,
0: जे प्रसाद भाई दुर्लभ दे।
1: नानक ताकी भगत करे,
0: जे प्रसाद आपूखन पहरी जय।
1: मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय,
0: जेहे प्रसाद अश्व हस्त असवारी।
1: मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी,
0: जेहे प्रसाद बाग मिलख तना।
1: राख पुरुए प्रभ अपने मना,
0: जिन तेरी मन मंत्र आई।
1: उठत बैठत साध तिसह त्याई,
0: तिसे त्याई जो एक लख।
1: इहां उहां नानक तेरी रख,
0: जेहे प्रसाद करे बन बोधान।
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान,
0: जेहे प्रसाद तू आचार व्यवहारी।
1: तिस प्रभ को सास सास चितारी,
0: जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप।
1: सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप,
0: जे प्रसाद तेरी निक्की जात।
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात,
0: जे प्रसाद तेरी पतर है।
1: गुर प्रसाद नानक जस कहै,
0: जे प्रसाद सुनह कर्ण नाद।
1: जे प्रसाद पेख है बिसमाद,
0: जे प्रसाद बोलह अमृत रसना।
1: जे प्रसाद सुख सहजे बसना,
0: जे प्रसाद हस्त कर चल है।
1: जे प्रसाद संपूर्ण फल है,
0: जे प्रसाद परम गत पावे।
1: जे प्रसाद सुख सहज समावे,
0: ऐसा प्रभु त्याग और गत लागो।
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो,
0: जेहे प्रसाद तू प्रगट संसार।
1: तिस प्रभ को मूल न मन हो बिसार,
0: जेहे प्रसाद तेरा प्रताप।
1: रे मन मूड तू ताको जाप,
0: जेहे प्रसाद तेरे कार्य पूरे।
1: तिस है जान मन सदा हजूरे,
0: जेहे प्रसाद तू पावे साज।
1: रे मन मेरे तू तास्यो राच,
0: जेहे प्रसाद सब की गत होए।
1: नानक जाप जपै जप सोए,
0: आप जपाए जपै सुनाओ।
1: आप गावाए सुहर गुण गाओ,
0: प्रभु कृपा ते होए प्रगास।
1: प्रभु दया ते कमल बिगास,
0: प्रभु सो प्रसन्न बस मन सोए।
1: प्रभु दया ते मत उत्तम होए,
0: सर्व निधान प्रभु तेरी मया।
1: आप हो कछु न किन्हु लय।

0: साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत,
1: संग सगली होत,
0: साध के संग मिटे अभिमान,
1: साध के संग प्रगटे सुज्ञान,
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा,
1: साध संग सोत निवेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक ऊपर जतन,
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी,
1: ज्ञान साध की शोभा प्रमाए सुमानी,
0: साध के संग अगोचर मिले,
1: साध के संग सदा प्रफुल्ल,
0: साध के संग आवे बस पंचा,
1: साध संग अमृत रस पंचा,
0: साध संग होए सब की रेन,
1: साध के संग मनोहर मैन,
0: साध के संग न कत हूं तावे,
1: साध संग स्थित मन पावे,
0: साध के संग माया ते पिन,
1: साध संग नाम प्रभु सो प्रसन्न,
0: साध संग दुश्मन सब मीत,
1: साध के संग माप नीत,
0: साध संग के सिउ नहीं बैर,
1: साध के
0: संग नाही को मंदा,
1: साध संग जाने परमानंद,
0: साध के संग नाही हो ताप,
1: साध के संग तजे सब आप,
0: आपे जाने साध बढ़ाई,
1: नानक साध प्रभु बने आई,
0: साध के संग न कब हूं तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बस अगोचर लहै,
1: साधु के संग जर सहे,
0: साध के संग बस थान ऊंचे,
1: साधु के संग मैल पूछे,
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाई नाम निधान,
1: नानक साधु के करवान,
0: साध के संग सब कुल उधार,
1: साध संग साजन में निकटम निस्तार,
0: साधु के संग सो तन पावे,
1: संते सबको बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग सुपासुर देवा,
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध संग मत गुण गायन,
0: साध के संग सर्वथान गम,
1: नानक साध के संग सर्व जनम,
0: साध के संग नहीं काश काल,
1: दर्शन पेट तोत नियाल,
0: साध के संग कलुख तहर,
1: साध के संग नरक पर हर,
0: साध के संग इहां उहां सोहेला,
1: साध संग बिचरत हर मेला,
0: जो इच्छा सोई फल पावे,
1: साध के संग न बिरता जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बस,
1: ज्ञान गुजरे सासन रस,
0: साध के संग सुनो हर नाउ,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मनते बिसर,
1: साध संग सर्वण सर,
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
1: साध के संग कट कडीचा,
0: साध संग पहे आज्ञाकारी,
1: साध संगत पही हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध मिटे संजोग,
0: साध की महिमा वेद ना जाने,
1: दिता सुने दिता उठे अन्ने,
0: साध की उपमा ते हो गुण ते दूर,
1: साध की उपमा रही पार दूर,
0: साध की शोभा का नाही अंत,
1: साध की शोभा सदा बेअंत,
0: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सूर सर्प को सुख
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल पवन
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीर देख
1: जो मसदा को खोता।

0: से जैसे तारों पर आकाश
1: ज्ञानी के मित्र सत समान
0: ज्ञानी कहना ही अभिमान
1: ज्ञानी ऊंचे ऊंचा
0: मन अपने है सबके नीचा
1: ज्ञानी से जन पे
0: नानक जिन प्रभ आप करे
1: ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया
1: ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता।

0: संग पापा मल खोवे,
1: तिस भगवती की मत उत्तम होवे।
0: भगवंत की टहल करे नित नीत,
1: मन तन अर्पै बिसन परीत,
0: हर के चरण हृदय बसावे।
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे,
0: सो पंडित जो मन पर बोधे।
1: राम नाम आत्म में सोधे,
0: राम नाम सार रस पीवे।
1: उस पंडित कह उपदेश जग जीवे,
0: हर की कथा हृदय बसावे।
1: सो पंडित फिर जोन न आवे,
0: नेन प्राण सिमरत बुझे मूल।
1: सुखम मैं जाने असथूल,
0: चौबन को दे उपदेश।
1: नानक उस पंडित को सदा आदेश,
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान।
1: चौबरना मैं जपै को नाम,
0: जो जो जपै तिसकी गत होए।
1: साधु संग पावे जन कोए,
0: कर कृपा अंतर उर तारे।
1: पास प्रेत मुग्ध पाथर को तारे,
0: सर्व रहु गाव नाम।
1: कल्याण रूप मंगल गुण गाम,
0: काहू जुगत कृदे न पाये धर्म।
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म,
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास।
1: जिसका नाम सत राम दास,
0: आत्म राम तिस नदरी आया।
1: दास तो संतन पाए तिन पाया,
0: सदा निकट निकट हर जान।
1: सो दास दरगह परवान,
0: अपने दास को आप कृपा करे।
1: जिस दास को सब सोजी।

0: तैसा हर्क तैसा उस सोग,
1: सदा आनंद तै नहीं बियोग,
0: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
1: तैसा अमृत तैसी बेख खाटी,
0: तैसा मान तैसा अवहान,
1: तैसा रंग तैसा राजान,
0: जो वरताए साई जुगत,
1: नानक उह पुरख कही है जीवन मुक्त,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
1: जित जित घर राख तैसा तिन नाओ,
0: आपे करन करा बन जोग,
1: प्रभ पावे सोई फुन होग,
0: असरे आप।

0: सोहोवत बिष्टा का जंत
1: आपस को कर्म बंद कहावे
0: जन्म मरे बहुजोन प्रमावे
1: तान पूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: मानक इहां मुक्त आगे सुख पावे
1: धनवंता हुए कर गर्भावे
0: ऋण समान काश संग न जावे
1: बहु लस्कर मानक ऊपर करे आस
0: पाल पीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: खिन में होए जाए पाशमंत
1: किसे न बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुरु प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सो जन नानक दरगह परवान
1: ओट कर्म करे होंदारे
0: श्रम पावे सगले बिरथारे
1: अनकत बसया करे अहंकार
0: नरक सुर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगह कहो कैसे गवे
1: आप उसको जो पला कहवे
0: किसे पलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेंज का मन होए
0: कहो नानक ताकी निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कछ होए
0: तब इसको सुख नाही कोए
1: जब ही जाने मैं किछ करता
0: तब लग गर्भ जून मह फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: तब लग निचल नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय दे सजाए
1: रब कृपा ते बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छूटे
1: सहज खटे लाखो उठतावे
0: त्रिपत न आवे माया पाछे पावे
1: अनेक भोग बिखिया कहीं करे
0: नह त्रिपत आवे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: बट भागी किसे प्राप्त होए
1: कर्म करा बनो आपे आप
0: सदा सदा नानक हर

0: बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत कै दुखन आर जा कटै
1: संत के दुखन जमते नहीं छुटै
0: संत कै दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में बाए।

0: संत का निंदक महातताई
1: संत का निंदक घंटे करना पाई
0: संत का निंदक महा हत्यारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज तेहीन
1: संत का निंदक दुखिया दीन
0: संत के निंदक को

0: संत का दुखी सदा अपवित,
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब त्याग,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा विकारी,
0: संत का दुखी जन्म मरे,
1: संत की दुखना सुखते डरे,
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
1: संत पावे तलय मिलाए,
0: संत का दुखी अद बीच ते टूटे,
1: संत का दुखी किसे काज ना गूटे,
0: संत के दुखी को ध्यान परमाइये,
1: संत का दुखी जड़ पाइये,
0: संत का दुखी यंत्र ते थोथा,
1: सांस बिना मित की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ केश नाहे,
1: अपन बीज आपे ही काहे,
0: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
1: नानक संत पावे तलय उवार,
0: संत का दुखी एवं बिल लाए,
1: यूं जल बिहून मलिन रहाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: यूं पाव कींद नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: यूं वार दिल के तमाए दुखला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सद विद्या कहत,
0: किरत निंदक का तुर ही पाया,
1: नानक जो तिस पावे सोई त्या,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को दरगाह में सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइये,
1: संत का दुखी ना मरे ना जीवाइये,
0: संत के दुखी की पूजे ना आशा,
1: संत का दुखी उठ चले निराशा,
0: संत का दुख न त्रष्टे कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: पया कीरत न मेटे कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब घट तिसके ओ करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: प्रभ की उस्तत करो दिन रात,
1: तिसे ते आवो सास ग्रास,
0: सब काश वरत।

0: अनद रूप मंगल सद जाकै
1: सर्व लोक सुनिए करता कै
0: राज मैं राज जोग मैं जोगी
1: प्रभ में तबीसर गृहस्थ मैं भोगी
0: त्याय त्याय भगत है सुख पाया।

0: जब अकार एहो कृष्ण दृष्टिता
1: पाप पुण्य तब कहते होता
0: जब तारी अपन सुन समाद
1: तब बैर क्रोध किस संग कमात
0: जब इसका वर्ण चिहन न जापत
1: तब हर शोक कह सह व्यापत
0: अपनो आप पार ब्रह्म
1: तब मोह की शोक पर
0: अपन खेल आप भरतीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी जब एक है हर अगम अपार
1: तब नरक स्वर्ग का कौन उतार
0: जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाय
1: तब से सकल कहो के तठाए
0: जब अप है आप अपनी ज्योत तरह
1: तब कवन निडर कवन काट डराय
0: अपन चल तुम आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: नासी सुख अपने आसन
1: सहज मरण कहो काम नासन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जानकी त्राज कहो गत होए
0: जब अवगत अगोचर प्रवेका
1: तब चित्र गोत कैसे पूछत लेखा
0: नाथ निरंजन अगोचर अगाधे
1: तब कौन छिपे कौन बन पाते
0: अपन आप ही अचर्जा
1: नाके अपन रूप

0: राष्ट्रपति आप कथे अब सुनने हार जात सुभावे ता श्रेष्ठ उपाय तुम ते भिन्न नहीं किश होए
1: सब जगत परोए
0: जाको प्रभ जियो आप बुझाए।

0: अष्टपदे संत सांगयांतर प्रभडीठा
1: नाम प्रभु का लग मीठा
0: सगल सामग्री एक घट माह
1: रंग नाना दृष्टा है
0: नौ निद अमृत प्रभु का नाम
1: यही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाद अनहत नाद
1: कह न जाए अचर्ज विस्माद
0: देखे आज से आप दिखाए।

0: पार ब्रह्म निकट करके
1: सा सिमरह गोविंद
0: मन अंतर की उत्तर चंद
1: आस अनित त्याग होत्रंग
0: संत जना की दूर मान मांग
1: आप छोट बेनती करो
0: साध संग अगन सागर करो
1: सन के परले हो पंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: कुशल सहज आनंद
0: साध संग परमानंद।

0: जिस मन बसस होत निदान,
1: सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए,
0: प्रधान पुरख प्रकट सब लोए,
1: उज पाए स्थान,
0: बहुत न होवे आवन जान,
1: हर तन खाट चले जन सोए,
0: नानक जिसे प्राप्त।

0: परम रूप नीत मूर्त पूरन पुरख पार
1: भंजन हार
0: कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अधेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम
1: गर्भ गंजन भंजन मुक्त काम
0: आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत
1: गर्भ गंजन भंजन आद रूप असूत
0: अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार
1: सर्व लायक सर्व कायक।

0: उयं प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता
1: चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने
0: चतुर चक्र भरती चतुर चक्र परती
1: चतुर चक्र काले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र बासे
1: चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने।

0: सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय
1: के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र भोखा
0: के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र मान सदैव प्रधान
1: के सर्वत्र के सर्वत्र स्थापा
0: के सर्वत्र पान के सर्वत्र मन
1: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
0: के सर्वत्र

0: अमितोपसा
1: है कि आत्म प्रवाह
0: है
1: मद भाषण प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गन मुदाम अनगन प्रणाम मुन मन सलाम अन पवनाश मुन मन प्रकाश।

पीठ धर्म आतटीठ कर्म हर बोल मना चंदा प्रसाद करुणाल है अरकाल है जगतेश्वर है परमेश्वर है तृत के तरण है जग के करण है

0: जाएंगे, सत्तर समय अवलोक जाएंगे।
1: मानव इंद्र गजेंद्र निराधप जौन कर लोक को राज करेंगे।
2: कोट स्नान गजार कदान अनेक सोमवार राज करेंगे।
1: ब्रह्म महेश्वर विष्ण सची पथ अंत फसे जम फास परेंगे।
0: ये नार श्री पद के प्रास हैं भागवत से नार फेर ना दे तरंगे।
1: कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो।

0: जिसनु होर क्या करे विचारिया।
1: एक भरम भूले दस एक नाम लाग सवारिया।
0: प्रसादी मन भया निर्मल जिना।

0: मन वसिया जिन तुरह लिखिया आया
1: एक फिर करे करह गल्ला गल्ली कर न पाया
0: नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया
1: पवित्र होए थे जना जिनी हार से आया
0: ध्याया पवित्र हुए गुरमुख जिनी ते आया
1: पवित्र माता पिता कुटुंब सहत से पवित्र संगत सबाइया
0: पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिनी मन

0: मलीन है कित संयम धोता जाए।
1: मन तो वह शब्द लाख हर छो रह जत लाए।
0: कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजय ए सहसा इव।

अपने टहलियां दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना। काम क्रोध लोभ अहंकार तू बचा करके भावना श्रद्धा सहत दर घर दी सेवा दे योग बना लेना। हर मैदान फतेह बख्शिश करनी, सदा चढ़ दी कला बख्शिश करनी, अंग संग

पहवे सूरज पहवे चंद कोह करोड़ी चलतनान पहवे सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पहवे चाडाणी आकाश पहवे जोध महाबल सूर पहवे चावे जावे पूर सगले आप लिखिया सिर।

सेवा करम चढ़ाओ निरंज न मंचाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहत अनंत लाटू माधानियान गा।

मैं जोर चली चंद्रावल कांड कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लह आया बिंद्राबन में रंग किया। कल मैं बेदथर बन हुआ नाम खुदाई अलह पया नील वस्त्र कपड़े पहरे।

जप संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का है ता पांडे कट ना एह तुटै ना मल लगै ना एह जलै ना जाए।

दीवानंद आप जी की अमृत वाणी आसा की वार दे कीर्तन हुए छे पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ हुए गरीब नवाज आगाद बोध बाणी पढ़ दिया दसरिया पासों बेअंत बेअंत भुलना हुईया अनजान बच्चे समझ के मुआफ करनिया अगे तो सावधानता बख्शिश करके दर कर

मत बुद्ध प्रदान करू अते उपरंत अज दे हफ्तावारी दीवान सजाउण दी आग्या होवे। अखरवाद घाट भुल चुक माफ करनी।

0: मेमोरी कोई भी आ सकता। एक मिनट जी, भाई साहब नूं हुण बेनती आ, वो सम्मान सिरोपा देणगे जी, भाई साहब पन्नरपाल सिंह जी हुणी आ जाओ, इन्हां नूं कर दिओ सम्मान। बोले सो निहाल श्री अकाल। अगे हो जाए, अगे थोड़े जाए अगे। सो देखो, सीनियर होंदे होए भी उन्होंने साडी कौम का नाम उच्चा किया सिटी के अंदर। सो एक बार फिर जकारा होर छड़िए। बोले सो निहाल श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का।
1: आप जी थोड़ी जी सूचना साझा कर लें जान गया। इस तो बाद भाई जसबीर सिंह जी आप जी कथा सरवण करवाएंगे। जब तक पाइसी जी आते हैं आप जी थोड़ी जी सूचना साझा कर लिया जान गया। नर्सिंग के वोकेशनल कोर्सेज वास्ते जड़े स्कॉलरशिप अप्रूव हुए हैं उन्होंने डेट अक्टूबर 15 लास्ट डेट है। तो आप जी सनुदय गुरुद्वारा .org तो जाके एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। कत्तक की संगरान 17 तरीक न है, 23 तरीक न जन्मदिन बाबा बुढ़ा जी का है। 24 तरीक रेड क्रॉस जी ब्लड डोनेशन वास्ते गुरु घर च आ रही है। आप जी जरूर अपना जिन्ना भी ब्लड दे सकते हैं, ब्लड देना लाइफ सेव होंगी है। 27 तरीक प्रकाश गुरु रामदास जी का है। ते नवंबर 3 गुरगद्दी गुरु हरकृष्ण साहिब जी की, ज्योति जोत गुरु हर राय जी का है। ते बंदी छोड़ नवंबर 8 है। 24 नवंबर नू प्रकाश गुरु नानक देव जी का है। हुन आप जी दे नाल बीबी बरजीत कौर जी खालसा अपने विचार सांझे करनगे, जो कि गुरमत समागम होने जा रहा है गुरु घर दे विच, जो कि कल तो स्टार्ट है। सो उदे उते आप जी नू होर डिटेल दी इनफॉरमेशन देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीबी बलजीत कौर जी,

खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रह न ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम।

आवाज उच्ची कर देना ते असी पिच नहीं हाई करनी, सुर मिला के गाना है। सो कुछ बच्चे बिना पिच नू मिलाए वो गा रहे हैं, सो इतना उच्ची नहीं करना, आवाज मैच करनी जरूरी होती है। ठीक है जी। सो हुण असी पाठ करना है पंज पौड़ियां दा, सारे मिलके बोलो जी।